905-673-3337 क्यों ना आपां इसे दी गलबात कर लिए। तुसीं अज तक ऐसा किहड़ा काम कीता तुहानूं लगदा कि यस मेरे कोल स्मार्टफोन दा मुल पै गया। तुसीं किसी दी मदद कीती जिथे तुसीं पोस्ट पाई कुछ ऐसा गैट टूगैदर कीता जिथे बहुत सारे लोग जुड़ गए। तुसीं अज तक थोड़े हाथ दे विच स्मार्टफोन आ कि तुसीं अज तक उहदे नाल कोई चंगा काम कीता, अवेयरनैस का काम किया, किसी के भले का काम किया, किसी के फायदे का काम किया। जिदा किसी का फायदा हो, किसी गरीब का जरूरतमंद का नहीं किया होना, बहुत घट है। हाँ ये गरंटी है कि तुम 500-700 रील हो सकता ज़्यादा एवरीडे वेख लेंदे होंगे, इन्ना तो तुम जरूर किया होना। बहुत घट लोग ने जेडे सोशल मीडिया नू एक चंगे मैसेज की तरह लेंदे ने, उसका इस्तेमाल करना जानते ने, वो एटलीस्ट चार पैसे कमा लिया करो। देखो किड्डे किड्डे ब्लॉगर्स आ मिलियनज ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं यूट्यूब तो। अगर फोन ही चलाना तो इस तरह चलाओ कि या थोड़ा फायदा होवे, या तुसी अवेयरनेस का मैसेज दो, पंजाबी का फायदा होवे, पंजाब का फायदा होवे, थोड़ा फायदा होवे, किसी जरूरतमंद का फायदा होवे। तो अदरवाइज जे आप इन्हें चला रहे तो फायदा तो जो फायदा ही है नहीं तो फिर आप चला क्यों रहे हैं, सिर्फ अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए। तो आप फिर होए ना सैल्फिश जी उदा कोई आप कह दे कि भाई तू सैल्फिश आ, फिर बहुत गुस्सा कर दिया। सो 905-673-3337 905-673-3337 ओ नंबर मैं हौली बोलता राइट 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातां हो सकदियां। फायदे की गलबात कर रहे हैं, कोई तुसीं फायदा किया, थोनों लगता कि तुसीं स्मार्टफोन नाल किसी का फायदा किया, किसी की हैल्प की। अज तक तुसीं स्मार्टफोन लए नूं किन्ना टाइम हो गया, थोड़े हाथ में स्मार्टफोन आ किन्ने समय तो, या तो तुसीं थोड़ी जॉब इदां दी है कि थोनों स्मार्टफोन की लोड़ पैंदी है तो फिर भी मन सकते हैं। जे तुसीं ट्रक चलाउंदे हो, टैक्सी चलाउंदे हो, ऊबर चलाउंदे हो, या तुसीं कुछ होर XYZ जॉब कर दे हो जिदे विच सोशल मीडिया दी या इस स्मार्ट डिवाइस दी लोड़ बहुत हल्के नहीं पैंदी, जां वत्त

बात है। कैसे हो यार? बल्ले बल्ले है, ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हो? खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ा मीठा जहा मौसम है। तो एक बार फिर एक सोहना दिन, बड़ी सोहनी शाम एंजॉय करने लिए आप पहुंच चुके हैं। तो इकट्ठे रौनक मेला सजाने हैं। तो स्टूडियो का नंबर थोड़ा याद है, दसन की लड़ है, आई डोंट नो। चलो कुछ होंगे मित्र सज्जन साढ़े नवे जड़े कहते हैं भाजी, असं सारू तो पता ही नहीं सी भी थोड़ा रेडियो आता। इस तब कह लो कि पहली बार सुन रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दा पिछले तुसीं तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 35 साल तो इंजॉय कर रहे हो। तो उम्मीद है कि तुसीं जिन्ना असीं ना प्रोग्राम पेश करन वेले इंजॉय करदे आ, असीं होप करदे आ कि उस तों किते वध तुसीं सुण के इंजॉय करदे हो। क्योंकि देखो जिहड़ा सुनण वाला ना उह तां ही इंजॉय करूगा जे पेश करन वाला बंदा खूब इंजॉय कर रहा। हुण तुसीं फॉर एग्जाम्पल लै लो, जे कोई बंदा खड़ा ला रहा, कोई कॉन्सर्ट ते परफॉर्म कर रहा, जे उहनूं आप ही नहीं मजा आ रहा तां ऑडियंस नूं की मजा आउणा। कोई क्रिकेट प्लेयर है, बैट्समैन है, उहनूं मजा ही नहीं आ रहा खेडदे नूं, तां उहदी फिर गेम भी उह चीज रिफलैक्ट करूगी। उहनूं खेडण वेले नहीं मजा आ रहा ते फिर जिहड़ा देखण वाला उहनूं कित्थे आउणा। सो इही चीजां ने, जो भी करदे हो ना पूरा एन रीझ नाल पूरा इंजॉय करके करिया करो, तां ही गल बणदी आ। हुण एवें आपां उत्तों उत्तों करी जाइए उहदा की फायदा। सो खूब इंजॉय करना बनता। तो थोड़ी एक आवाज तो एक उस चीज की झलक नजर आवे कि बल्ले यार बंदा तो आए प्रोग्राम कर रहा है जिवें इहदा वाकई शौक है। चलो साडा तो है ही शौक है, बट होना इदा चाहिए। तो ही तुसी फिर सुन के कहने नवी यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम सुनदा मजा आ गया। सो खैर स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337। कोई भी गलबात करनी है साडे नाल, कोई भी नंबर लेना साडे तो, तुसी कोई भी गीत संगीत लगवाना, गल की कुछ भी है, नंबर घुमा लो 905-673-3337 9056733337। ते गलबात थोड़ी साडी हो सकती है। ते आगे पगां पोचमियां वाले हैं रही बच के।

0: 9256 9257।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
2: 6478355294 6478 5294 शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251।
3: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
4: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
2: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
1: 416-717-2929
2: 416-717-2929 ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ।

0: 5799 8877 sofa studio.ca। थैंक यू जी।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुने करदे आ संधु साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कॉम

0: मॉर्गेज दी बनी कोई गल?
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल। कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल।
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल। तुहाडियां लोड़ां मुताबिक वधिया लोकेशंस ते बेस्ट प्राइस ते कर आसानी नाल लेके दिंदे ने। रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल, आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917

आज खूबसूरत सुबह था, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क है। ये चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी तक सुन रहे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार, चढ़दी कला वाला, निरपो निर्वैर रहेगा। उम्मीद मुस्कुराहट चेहरे का पाठ, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तो तुम चलते रहोगे।

0: 416-910-9000 एंड $90,000 की स्पोर्ट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। सो तुसी कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000 416-910-9000 ते वेबसाइट है punjabinsurance.ca। थैंक यू सो मच पाजी।
1: थैंक यू सो मच सर पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती, ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221।
3: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
4: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
7: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम से। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।
1: सोमन जी, डगफोर्ड दे उपर एक सवाल उठे हुण कि डगफोर्ड चार्टर प्लेन लैके
8: ठीक है
1: किते भी जा रहा हैगा।
8: ओके,
1: ते क्या जा रहा है कि चार्टर प्लेन लैके जिहड़ा हैगा पब्लिक दे खर्चियां दे उत्ते डगफोर्ड फ्लाई क्यों करदा पिया हैगा? डगफोर्ड अजकल क्वेश्चन च कर गया, जिहड़े उहदे बणदे मुद्दे सी उहनां तों परे हट के होरे मुद्दियां ते कम करी गया, ते समा सही नहीं चल रहा।
8: हाँ जी,
1: पर राजनीतिक लोग ने दे डोंट केयर। सपोज डगफोर्ड 2 साल हट भी जाता, हटते ही इहनूं किसे कंपनी ने 7-8 लाख ते रख लेना।
8: बिल्कुल,
1: साल की 7-6 लाख ऐ रखते लोग इन्हों। सुन लो मेरी गल ध्यान, जो सुनते पे सारे, कोई 2.5 लाख से रखता, कोई 3 लाख से, इन्हों सीधी जॉब मिल जाती। कारण दसना की है, मैनू यह लगता, मैनू डाउट है इस गल दे कि कोई बंदा किसी पार्टी च बड़े टॉप के लैवल तो निकलिया। हार्पर, स्टीफन हार्पर नूं हायर किया होया, हजे तक हायर्ड आओ देख लो, रिटायर है सियासत चो, पर उहदा हायर्ड आ क्यों? क्योंकि इन्हां दे कनैक्शन बन जाते हैं उपरले पासे।
8: बिल्कुल,
1: मैनू लगता हुंदा कि सैमी कमर्शल एक करप्शन टाइप ए चीज़ आ कि कोई बंदा नौकरी लग गया सियासत छड के, हुण उहदे बेनीफिट लै रहा जिहड़े उहदे लिंक बने हुए सी उहदे बेसिस ते कम करवाउंदा।
8: बिल्कुल सही गल,
1: कंसल्टिंग कंपनियां खोल लैंदे ने अपनियां, मिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करते हैं, तो तुसी कित्थे तुरे फिरते हो भाई, कित्थे तुरे फिरते हो? 2500-3000-4000 बना के बिचो टैक्स पे करते हैं आप पूरा दब के, फिर जाके इन्हों सैलरीज मिल रही है सारे। तो डगफोर्ड के उ सवाल आ रहे हैं कि चार्टर प्लेन लैके यह जाता कितने भी जाता जे, तो हूँ डगफोर्ड कहता मैं सैकल तो जाया नहीं करना, जहाज से जाऊँगा। कहता जे ऑटोवा जाना हो, सुनो की गल सुनो ध्यान, ऑटोवा जाना हो कहता 2.5 घंटे ही पीयरसन एयरपोर्ट पर लग जाते हैं, 1 घंटे का हवाई रस्ता। कहना गांह फिर ऑटोवा तो आने लगे 2-2.5 घंटे उत्थे लग जाते, 7 घंटे का ट्रिप होगा कहना मेरा ऑटोवा का। वाह ओए माँ दे पुत्रा, कहना बड़ी महत्वपूर्ण मैं पोस्ट के उत्ते हाँ। जे तू इन्ने महत्वपूर्ण काम कर रहे ना डगफोर्ड साहब, लैंडलॉर्ड ट्रेन बोर्ड एक ऐड चला Ontario.ca की मेन स्ट्रीम चैनल के उत्ते, कहते हैं कि जेलों बना रहे हैं, हस्पताल भर रहे हैं, वो भाई जेलों खाली हो रही लग जाए तुहाडियां, पुलिस वाले के हाथ बन्ने ने, क्रिमिनल्स खुले ने।
8: बिल्कुल,
1: हस्पताल तुहाडे भरे पए ने, बारी नहीं आती, मशहूर हो तुसी सारे किते,
8: कोई हाल नहीं हस्पताल,
1: ते तुसी Ontario.ca दी ऐड चला रहे हो, जाओ उते विजिट करो। विजिट की कर रहे, सखा ना दिख रहे हैं सारे। हुण प्रीमियर साहब नूं 7 घंटे जिहड़े इच्छुपण लग गए, तो जिहड़ी आम पब्लिक है की गल, ओह आम पब्लिक ते तुसी VIP, शुडन बी लाइक दैट। डगफोर्ड के कई मिनिस्टर अपनी कारा बदलने फिरते, नवी अपग्रेडेड कारा ले लीए, हूँ पुरानी लगदिया ने, मैनू नहीं लगता भी किसी मिनिस्टर की कार आ चाहते हैं तो रिपेयर निकल आती होगी। सो ये सारे स्टैंडर्ड्स ने इन्हें घेरे के आ चुके हैं, क्योंकि ये गल्ला करके आम आदमी पार्टी वगू जिम्मे सैकल चला चला जाते, सैकल चला चला के जाते जो MLA चंडीगढ़ में सैकल पर ही जावे, जाद्या मिनिस्ट्री मिल जूगी। सो सैकल वाले बंदे लोगों ने सैकल चकाते उन्होंने घर चो चोरों तो। हाँ जी, क्राइम का लैवल यह है कि साइकिल भी चक के लैंदा घर चो चोर। मैं चाइना की गल करता हूं, मैं चाइना गया, सड़कों के उत्ते EV बाइक्स खड़िया ने, जगह जगह स्कूटर खड़े ने सड़कों पर, जगह जगह सड़कों पर फ्रिज कूलर लगे हुए ने जिन्हें कोक या कोई जो ड्रिंक्स होंगे ने या जोड़े आह सॉफ्ट ड्रिंक्स ने पाए होंगे ने, किसी की मजाल नहीं है कि किसी के बाइक में चक के ले जाए, क्योंकि उन्होंने पता अज मैं बाइक चकूंगा सवेरे मैं पुलिस चकूगी, सर्विलेंस इन्नी जबरदस्त है। ਸਾਡੇ

0: गुजरर भैया
1: जी।
0: भैया मैं ये काम आज कल से नहीं है, लोगों को बहुत साल से 500 या 1000 साल से हमारा यंगस्टर्स ये काम करता है, राज वैद्य है
1: जी।
0: ये काम सारा हम हर्बल से करता है, जड़ी बूटिया से। ये सारा जड़ी बूटिया हम लेकर आता है हिमालय से, केरला से, तमिलनाडु से, वैसा वैसा किधर किधर अच्छा अच्छा जड़ी बूटिया मिलता है, वो जड़ी बूटिया लेकर आकर हम इलाज करता है लोगों को। उसमें जॉइंट पेन आप बताया था सच्ची है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, एस्ट्रो आर्थराइटिस, गाउट एंड लोअर बैक पेन, L3, L4, L5 में बल्जिंग होता है, डिस्क में प्रॉब्लम हो जाता है उसको लिए, और सायाटिका होता है भैया। आजकल सायाटिका जो बहुत लोगों को ज्यादा होता है, सायाटिका मतलब हिप से नीचे तक को नर्व्स वैसा वैसा होता है, पिंच होता है, पिंच होकर नमनेस हो जाता है, बहुत देर बैठे तो हार्ट हो जाता है, वो बर्निंग सेंसेशन आता है, वो ये नेक में भी आ जाता है भैया। आजकल नेक में भी ज्यादा लोगों को वो सर्विकल का नर्व्स का वीकनेस हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसको लिए भी बहुत लोग आ रहा है। हमारा शो सुन के कम से कम बहुत लोग आ गया था, सारा लोग ऊपर वाला का आशीर्वाद से ठीक हो गया था।
1: ठीक है,
0: ये सारा मैं कर रहा है हर्बल, सच्ची सच्ची हर्बल से कर रहा।
1: ठीक है,
0: अच्छा तो उसको पक्का इलाज है, मैं क्या क्या बता रहा है उसको 100% रिजल्ट, तो हमको पक्का रिजल्ट मिलता है विद इन 1 वीक 10 डेज को अंदर।
1: मैंने आपके साथ लास्ट वीक बात किया था और बहुत लोग शुगर के साथ बहुत परेशान है, उनका शुगर हाई हो जाता है।
0: और शुगर के लिए
1: जी
0: मैं आपको एक बात बताना भाई, शुगर को क्या करता है, हमारा पैंक्रियास को डैमेज करता है, पैंक्रियास को फिल्ट्रेशन कम करता है, इसलिए शुगर हमको नहीं वो रिलीज आता है पैंक्रियास से, इसलिए क्या होता है वो शुगर लोगों को यूरिन में भी प्रॉब्लम होता है, पेशाब नहीं रुकता है, पेशाब नहीं रुकता है, वैसा वैसा वो पेशाब जाने तक, यूरिन में जाने तक लीकेज भी हो जाता है, बार बार जाना पड़ता है। शुगर लोगों को ज्यादा लोगों को प्रोस्टेट भी आ जाता है।
1: ओ, अच्छा।
0: या प्रोस्टेट आ जाता है। शुगर कैसे भैया, पहले वो 500 लेना पड़ता है, उसको बाद 1000 लेना पड़ता है, उसको बाद 2000 लेना पड़ता है, उसको बाद इंजेक्शन लेना पड़ता है, वैसा होता है शुगर। ये किसके लिए होता है, हमारा शरीर को अंदर पैंक्रियास का बता के एक चीज होता है, वो फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, इसलिए शुगर डायरेक्टली हमारा खाना के साथ हमारा ब्रेड में जाता है, इसलिए उसको वो शुगर ज्यादा होता है। मेरा पास वो हर्बल से मैं बनाता है, वो इंजेक्शन लेता है लोगों को, टैबलेट लेता है लोगों को 1 वीक 10 दिन।
1: हाँ, जैसे आपको पता होगा, भी आपने बोला कि कई लोग इंजेक्शन लेते हैं शुगर का, वो तो बहुत परेशान हो जाते होंगे ना, उनका इंजेक्शन आप उनका इंजेक्शन बंद कराओ कैसे भी, है ना, आप थोड़ा सा
0: जरूर जरूर वो इंजेक्शन लेता है लोगों को 10 दिन में मैं इंजेक्शन बंद कर सकता है, वो पक्का इलाज।
1: आप ऑन एयर कह रहे हैं, देखो ऐसे आप ये
0: भाई बहुत लोगों को, मैं कम से कम 200-300 लोगों को किया था, 1-2 लोगों को नहीं।
1: अच्छा, 10 दिन में इंजेक्शन आप उनका बंद करवा दोगे?
0: बंद करा देता हूँ।
1: ये तो आपने आज हमारा तो वीकेंड बना दिया आपने, ऐसा बता के इसकी ये आप अंग्रेजी दवाई से बंद करते हैं कैसे करते हैं?
0: नहीं भैया, मैं हर्बल से बनाता हूँ, इंग्लिश दवा को लेने को जरूरत नहीं पड़ता है। वो इंजेक्शन वो 20-30 लगता है, पहले 2-3 दिन में ये 30 से 10 आना पड़ता है, 10 से बंद कर सकते हैं। वैसे एक ही कभी भी भैया इंजेक्शन को एक ही दम वो कम हो बंद करे तो बॉडी में दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए पांच एक दिन वैसा कम करके बिल्कुल वो इंजेक्शन नहीं होता है। इंजेक्शन बिना हमारा पास इलाज होता है, हमारा हर्बल से उसको कंट्रोल में 6.5 में हो जाता है शुगर 1 वीक 10 दिन में।
1: अच्छा, तो इंजेक्शन तो छूट जाएगा ये तो आपने।
0: हाँ जी।
1: सच्ची कहता हूँ, आपने लोगों के कितने दवाएं लेनी आपने, ऐसे अगर उनका इंजेक्शन छूट जाएगा तो बहुत लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि यार हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है सुबह शाम को, जिस टाइम ये डॉक्टर ने बोला होगा। तो आप किस नंबर पे हम लोग आपको बात कर सकते हैं आपके साथ?
0: मेरे को भैया, पहले मैं 3 दिन स्कार्बरो में रहता है, 4 दिन ब्रम्पटन में रहता है।
1: ठीक है।
0: वीकली पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कार्बरो रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन मैं इधर ब्रम्पटन में रहता।
1: अभी तो ब्रम्पटन में ना आप?
0: हाँ, आज कल परसों 3 दिन ब्रम्पटन में रहता है। मेरा फोन नंबर है 4374383899।
1: क्या बात है, नंबर भी आपका बहुत अच्छा है, 99 बड़े लग रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ गुरुजी को कॉल करें अभी आप और इनके साथ टाइम सेट करें और इनका एड्रेस ले जहाँ ये बैठते हैं। ब्रैम्पटन में होते, कौन से एरिया पे होते हो आप? इधर मेरे को पता चला था क्वीन और इधर ही है ना,
0: रदरफोर्ड के बाजू में, क्वीन और रदरफोर्ड के बाजू में रहता है भाई।
1: अच्छा, क्वीन और रदरफोर्ड के इधर
0: बहुत नजदीक है, और स्कारबरो में मार्कमैन लॉरेंस के बाजू में रहता है।
1: ठीक है, नंबर एक बार फिर दे दें गुरु जी आप।
0: 437 4384399।
1: मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कहते हो ये आपके आपके पापा जी, आपके फादर साहब भी यही काम करते थे, आपके दादाजी यही काम, आपने किसी नाम वाले बंदे को ठीक किया जैसे जिसका बड़ा बड़ा नाम हो इंडिया में?
0: भैया बहुत बहुत बड़ा बड़ा लोगों को किया था, सिनेमा स्टार्स भी मेरे पास आता है।
1: कौन?
0: और सिनेमा स्टार्स भी, साउथ इंडिया सिनेमा स्टार्स की बहुत लोग आता है।
1: हाँ?
0: और नाम नाम बताए तो अच्छा, ना इसलिए नहीं बता रहे, बहुत लोग मेरे को अप्रिशिएट को लेटर दे दिया है मेरे पास आके, गुरुजी मैं इतना प्रॉब्लम में है, मैं आप मेरे को वैसा ठीक किया था वैसा भी दे दिया था। बहुत बड़ा बड़ा लोग, वो नाम देने को मैं थोड़ा ऑन एयर में थोड़ा फील करता है।
1: मेरे को किसी ने बताया था कि आप इंडिया के बड़े बड़े लोग जो मंत्री,
0: इंदिरा गांधी जी नेहरू जी, मेरे दादा लोग उसको ट्वीट किया था।
1: इंदिरा गांधी जी को भी?
0: हाँ, इंदिरा गांधी जी को, उसको पापा नेहरू जी, नेहरू गांधी जी को भी, मेरा गांव को आ गया था मेरे लिए, मेरा दादा के लिए।
1: हाँ?
0: उधर से मेरा गांव को आके उधर से ट्रीटमेंट पर्सनली आया था, ट्रीटमेंट लेके गया था। वो मेरा दादा 2-3 बार दिल्ली में जाके इंदिरा गांधी जी के घर में रह के उसको ट्रीटमेंट किया था, उसको फैमिली को भी ट्रीटमेंट किया था।
1: ये तो
0: वैसा फैमिली है हमारा, बड़ा बड़ा लोग, वो नाम नहीं बताता, बड़ा बहुत लोगों को कर रहा है, इधर भी बहुत बहुत नाम लोग, बहुत लोग आ रहा है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, सारा लोगों को भगवान आशीर्वाद से अच्छा है।
1: ये तो आपने आज कमाल कर दिया, इतने प्राइम मिनिस्टर को आपने ठीक किया।
0: हाउर भैया स्किन डिसीज के लिए हमारा पास बहुत लोग आ रहा है, स्किन चमड़ी के प्रॉब्लम से, एग्जिमा, छोटा छोटा बच्चा को एग्जिमा, बड़ा लोगों को एग्जिमा, सोरियासिस, एलर्जी, वैसा के लिए बहुत हमारा पास बहुत कमाल का।
1: हाँ, आज आपने बात की है एलर्जी की, आजकल के दिन में एलर्जी हो जाती है लोगों को बहुत।
0: हाँ वही है, वो नास ब्लॉक हो जाता है, नास में रनिंग नोज हो जाता है, वैसा बहुत लोगों को किया था। अभी भी कल परसों भी मेरे पास हमारा कम्युनिटी से बहुत बड़ा लोग आ गया था, उसको फैमिली में भी नास ब्लॉक है सारा लोगों को।
1: अच्छा,
0: उसको मैं दे दिया था 1 वीक में, वो आज आके बता रहा है, कल आके बता रहा है, गुरु जी पहले मेरे को नाक से स्मेल नहीं आता है, आज मेरे बेटे सारा स्मेल देखता है, बहुत शुक्रिया आपको, वैसा बोल के बता रहा है, हमारा सिख कम्युनिटी बहुत लोग, बड़ा लोग।
1: बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर जाने से पहले गुरु जी अपना नंबर दे दें।
0: मेरा नंबर भैया 437 4384 3399।
1: आपके पास आज शाम को भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, संडे को भी आ सकते हैं ना?
0: राइट भाई, सुबह 10 AM to 10 PM।
1: बड़ी शुक्रिया आपका गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा, और नंबर एक बार फिर नोट कर लो, ये वाकई मैं लोगों को सुने हैं कि जेडे इन्हां दे हर्बल दे प्रोडक्ट है वो वाकई ही बहुत ज्यादा लाहेवंद हो रहे हैं, बहुत लोगों को सुनिया मैं। एक डॉक्टर साहब ही ठीक हो गया है, डॉक्टर साहब खुद आप डॉक्टर साहब, तो मैं उन्होंने नाम नहीं लेना मैंने पता, पर फिर भी नंबर नोट करो तो 437-438-3399। और अज का प्रोग्राम तुम्हें पता कि स्पॉन्सर असी प्रोग्राम होंगे सुल्तान जी वालों, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस वालों स्पेशल तौर पर प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है। जी सुल्तान जी, की हाल चाल है सर?
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते जिस तरह तुसी दस्या जी, ए स्पॉन्सर प्रोग्राम इस करके आ क्योंकि सैमसंग स्पॉन्सर कर रहा जी,
1: जी, जी।
2: फीफा वर्ल्ड कप नू, ते जदो फीफा वर्ल्ड कप दी सॉकर दी गल आउंदी है, इतने वड्डे इवेंट दी गल आउंदी है, ते बिग स्क्रीन टीवी ते सैमसंग दे डिस्काउंट दी गल आउंदी है, ते बिग स्क्रीन टीवी दे उपर बिग डिस्काउंट ही सैमसंग ऑफर कर रहा, 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर दे नाल, 85 इंच का QLED $2000 वाला जी, सिर्फ 1299 का दे रहे हैं, ते 1299 भी 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 55 इंच 399 च सिर्फ मिल जाएगा, जे मिस कर गए ते दोबारा ये $800 तो घट नहीं है दी प्राइस जी, ते जे 65 इंच लेना है 699 का मिल जाएगा, जे तुसी मिस कर गए तो फिर $900 तो घट नहीं है अगे जाके मिलना, जिन्ने पीस इन स्टॉक है ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, 905-450-2828 ਜੀ।
1: ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ 98 ਇੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, 98 ਇੰਚ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 98 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 TV ਇਨ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। 5 ਲੱਕੀ ਕਸਟਮਰ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ $3500 ਵਾਲਾ 98 ਇੰਚ ਸੈਮਸੰਗ ਸਿਰਫ 1999 ਦਾ ਜੀ, ਤੇ 1999 ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 15-20% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਲੈਣਾ $5000 ਵਾਲਾ, $29.99 ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 30 ਜਾਂ 33 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 36 ਇੰਚ ਵਾਈਡ ਫਰੈਂਚ ਡੋਰ ਫਰਿੱਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਵੀ ਸਟੀਮ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਸਟੀਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਲਾਟੀਨਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਲਾਟੀਨਮ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ $2500 ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਓਨਲੀ $17.99 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ $800 ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ।
1: ਇਹਦੇ
2: ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, 905-450-2828। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ brampton appliances.com। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਹਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, 2 ਪੀਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ $150 ਤੇ 3 ਪੀਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ $300, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ। 905-450-2828 905-450-2828 ਜੀ।
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਰ?
2: ਇਹ ਜੀ ਹੈ 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ ਜੀ, brampton appliances.com ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905-450-2828 905-450-2828 ਜੀ।
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਹਰਬਲ ਵੈਗਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। 416-425-0138 ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। 416-425-0138 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
3: ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੀ ਗਾਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਨਲ ਕਾਰਵਾਸ਼ ਹੈਗਾ, 4 ਕੋਇਨ ਕਾਰਵਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਇਨ ਲਾਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਨੇ, 3-ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, 1.2 ਏਕੜ ਲੋਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਥਰਾ ਲੇਕਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਗਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 647-988-4449। ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 647-988-4449, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ।
4: ਬਾਈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ ਟਰੱਕ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ।
5: ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ,
6: ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੇਖੋ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
7: ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲ, 17 Stratton Avenue, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਬਿੱਲ ਸੇਖੋ 416-819-6000।
8: ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਨੰਬਰ ਹੈ 416-524-3535, 416-524-3535, ਵਿਦੇ ਛਾਬਰਾ ਫਰੋਮ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
9: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m.

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80.
2: 98.
1: 80. गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom, 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222, 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

0: इंडियन फ्रूट लैंड ते मेगा सेल लगा दी है जी। पिल्सबरी चक्की आटा 20 pound 10.99 का, स्वर्ण चक्की आटा 20 pound 10.99 का, पिल्सबरी मल्टी ग्रेन आटा 20 pound 12.99 का, मधाणी का देसी घ्यो 22.99 का, टाटा प्रीमियम टी या टाटा गोल्ड टी 9.99 की 1 kilo, मसूर दाल चना दाल 3.99 के 4 pound है, गोभी 1.99 ईच, मस्टर्ड ऑयल 15 liter 17.99 मिलेगा। ते सत्तर दिया सत्ते लोकेशन ते सेल चल रही है इंडियन फ्रूट लैंड।
1: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world,

0: ਬਿਲਕੁਲ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 21 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਸਟੀਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਮਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟਿਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ।
1: धन्यवाद जी, सत श्री अकाल किरण जी, आपको हमारी सारी टीम को हैप्पी फ्राइडे, और आपको जो मेला करवा रहे हो अकेले अकेले टिकट कब दे रहे हो हमें?
0: बिल्कुल जी, बहुत जल्दी आपको टिकट्स मिल जाएंगी, बट द थिंग इज कि ओनली लेडीज कैन कम।
1: ओह अच्छा, ऐसा खवातीन का प्रोग्राम है ये?
0: सो योर फैमिली कैन कम टू, आपकी फैमिली आ सकती है?
1: ऑफ कोर्स माय डॉटर एंड माय फैमिली ऑफ कोर्स लव टू जॉइन।
0: Yes.
1: Or I can see a lot of excitement going on.
0: Ji, bilkul ji. Because the radio got busy, hana, bahut sare singers bhi radio pe aa rahe hain, and then we have to do some interviews too. So it was busy, but now we're back, right?
1: Yes.
0: So aaj main aapse thodi si jo hai mortgage sambandhi jo hai gal baat karenge. Acha, aapki ek tagline hai, kehte hai ki mortgage ab aasan hai, don't worry, Mukesh Chauhan hai. I really like that line.
1: Kyunki
0: aasan to bilkul ho jayegi, kyunki aap itne time se ek to hai is field mein kaam kar rahe hain, and really jab bhi main dekhti hu aap बहुत क्लियर कट एडवाइस देते हैं, राइट? यू नेवर थॉट ऑफ बीइंग यूजिंग यू नो शॉर्टकट्स एंड ऑल दैट, सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट यू।
1: थैंक यू सो मच किरण जी, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और एक्चुअली पता है क्या होता है, फाइनेंसेस मैं समझता हूँ आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, अगर आपको पैसे संभालने की कला नहीं है आपके पास, राइट? इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस, वो अच्छी अच्छी चीजें बर्बाद हो जाती है। यू कैन नॉट होल्ड ऑफ, चाहे आप घर पैलेस बना लो, चाहे आप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राइट एडवाइस। अगर मुझे कोई चीज नहीं पता, आई वुड रादर प्रेफर नॉट टू एडवाइस, है ना? तो आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं क्या पता, ये पता होना चाहिए किसको क्या पता है
0: जी।
1: अगर मैंने पता है कि किरण जी और सुखी पाल जी द बेस्ट आल जे, आई वुड सजेस्ट यू गाइस, राइट? सो दैट्स द, आई थिंक दैट्स हाउ द वर्ल्ड शुड बी।
0: बिल्कुल जी। सो अच्छा मुकेश जी, आज मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी एडवाइस क्या है रिन्यूअल को लेके, एंड हाउ यू कैन हेल्प देम? अच्छा, अगर कोई स्पेशली आजकल इकोनॉमी टाइम वी नो कि बहुत हार्ड है, राइट? इट्स हार्ड फॉर ईच एंड एवरी फैमिली टू सर्वाइव, राइट? सो अगर किसी को अर्ली रिन्यूअल भी चाहिए तो हाउ यू कैन हेल्प देम?
1: देखें, दो ऑप्शन है, किसी का रिन्यूअल विद इन 3 to 6 months आ रहा है तो बैंक ऑटोमेटिकली गिव्स द रिन्यूअल ऑफर, राइट? पहली चीज है, पहले अगर काफी मुझे कॉल्स आती हैं किरण जी के, सर हमारा रेट क्या है, तो वो पहले बैंक से चेक ही नहीं करते हैं, वो विद इन 6 months एक्टिवेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द बैंक, राइट? तो अपने बैंक से चेक करें, अगर आप साथ में शॉप अराउंड करें, देखें नॉन नेसेसरी कि जो आपको ऑफर मिला है ब्लाइंडली डू नॉट साइन इट, डोंट साइन इट, यू शॉप अराउंड विद अदर लैंडर्स के क्या आपको रेट मिल रहा है। छोटा सा रेट भी कुछ आपको हजारों डॉलर बचा सकते हैं, है ना? तो दूसरी बात, इसके अलावा आपका रिन्यूअल अगर 6 महीने के बाद भी है, 1 साल के बाद भी है, अर्ली रिन्यू कराना चाह रहे हैं, बैंक से पेनल्टी करें, अगर पेनल्टी छोटी मोटी है 2-3 हजार डॉलर की, आपके डेट्स अगर 1-2 लाख डॉलर के हैं, आई वुड सजेस्ट टू पे ऑफ योर डेट्स। पहली बात है, देखें इकॉनमी स्लो डाउन है, बहुत सारी चीजें हैं इकॉनमी के बारे में बातचीत हो रही है कि वी आर इन अ काइंड ऑफ, है ना, टेक्निकल रिसेशन, राइट? बट टेक्निकल रिसेशन मेरे हिसाब से ये होता है कि आप और हमारे फाइनेंसेस कहाँ हैं, आपके और मेरे फाइनेंसेस हिले हुए, दैट इज द प्रॉब्लम। आपके और मेरे फाइनेंसेस हिलने नहीं चाहिए। आपको ये सजेशन है मेरी कि देखें, आप रीफाइनेंस, रिन्यूअल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। उसमें आपके क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, सेकेंड मॉर्गेज है, बिजनेस स्लो डाउन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, काम स्लो चल रहा है, घर में सिकनेस है, और किसी एक की जॉब नहीं रही, तो उस सिचुएशन में आप पहले से तैयारी करें 3-6 महीने पहले किसी भी

0: मेरी तरह प्रोफेशनल को रीच आउट करें और टॉक अबाउट हाउ यू कैन सेव $2,000 to $3,000 अ मंथ. मैंने अभी इतनी सारी मॉर्गेजेस करी हैं, हर क्लाइंट को मिनिमम $1,500 से लेके $4,000 तक की सेविंग मैंने उनके फाइनेंसेस में मंथ ऑन मंथ करके आई हैव डन इट. राइट, तो ये देखें बड़ी अमाउंट. आई एम नॉट द गॉड, बट आई एम हियर टू गिव यू राइट एडवाइस. ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया आई वुड से नो टू यू. ओके, दूसरी बात ये कि आप आपके जो भी फाइनेंस जो अर्ली रिन्यूअल की बात करिए, अगर एक अगले साल भी रिन्यूअल है पेनल्टी बैंक से चेक करें. स्टिल यू आर कंफ्यूज रिन्यूअल के बारे में, वेरिएबल रेट लें फिक्स रेट लें क्या अच्छा है, मॉर्गेज अगर आपके डेट्स कंसोलिडेशन में फायदा है या नुकसान है आपको, तो वो सारी चीजें आप मुझसे फोन में ही बात कर सकते हैं. इन पर्सन मिलना चाहे इन पर्सन मिले. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिन्यूअल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, डू नॉट मिस दिस. क्योंकि इसके बाद अगर आप लॉक करेंगे फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी, फायदा नहीं है. राइट, इट्स बेटर टू टेक एडवांटेज राइट नाउ. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, गिव मी अ कॉल. दिस इज मुकेश चौहान, आई एम हियर इन मिसिसागा. माई ऑफिस, माई डायरेक्ट नंबर इज 6475127000.
1: बिल्कुल. अच्छा मुकेश जी, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ठीक है अगर आपको जो है लो इनकम है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इज रियली टफ, राइट, एंड आपके पास मोर्गेज पे करने के लिए भी फंड्स इस टाइम नहीं है या आपकी जॉब जो है चली गई है एंड यू हैव मिस्ड द मोर्गेज पेमेंट्स, सो हाउ यू कैन हेल्प देम.
0: लोग है ना प्राइवेट मॉर्गेज के नाम सुनते ही डर जाते हैं एक्चुअली किरण जी, है ना. प्राइवेट मॉर्गेज का जैसे जिक्र करते हैं उसकी रीजन भी बहुत कॉमन ही है, क्योंकि प्राइवेट मॉर्गेज का रेट ज्यादा होता है
1: जी,
0: फी ज्यादा होती है. ऐसा नहीं है, देखें सिचुएशन बेस है. अगर आप यहाँ से कहीं पर मॉन्ट्रियल जा रहे हो, दूर रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी, और गाड़ी छोड़ोगे नहीं, यू विल नॉट लीव द कार, यू विल फिक्स इट एट एनी कॉस्ट. Private mortgage is a solution for your problem, right? Do not get married with private mortgage. Short term के ले लीजिए, 3 महीने से 1 साल के ले लीजिए. आपके CRA के dues हैं, आपका low credit है, आपको बच्चों के studies के लिए पैसे चाहिए, अपना credit fix कराएं. हमारे पास एक client आया था 480 credit score के बाद. Now within 4 months his credit is now 630. राइट, सो देखें कितनी इम्प्रूवमेंट है आफ्टर पेइंग ऑल द डेट्स, और विद इन टू मंथ्स वी विल मूव दैट मॉर्गेज टू द बैंक साइड. तो मैं आपको ये सोल्यूशन है, इज द प्राइवेट फाइनेंसिंग इज अ सोल्यूशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप प्राइवेट मॉर्गेज लें तो ये याद रखें कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए वाइल यू एग्जिट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. आई नो मेनी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ट्रक ड्राइवर, इमिग्रेशन वाले सुन रहे हैं मैनू, तो कोई भी आप इंडस्ट्री में हो, आप इस निकलना चाह रहे हैं झंझट से, मॉर्गेज पेमेंट मिस करिए 2 महीने की 3 महीने की, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, पैसों का इशू है, गिव मी अ शॉट. पहले मैं घर की वैल्यू चेक करके बताऊंगा आपके घर की वैल्यू क्या है विदाउट एनी कॉस्ट, देन वील गो फॉर अप्रेजल, उसके बाद फिर फंडिंग जो भी अरेंज करके है मैं आपको दूंगा. सो यू कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन, डू नॉट होल्ड इट योर सेल्फ. पहले ही डैमेज होने से पहले रीच आउट करें, मॉर्गेज पेमेंट मिस नहीं करें. अगर हो गई है स्टिल गिव मी अ कॉल, आई एम हियर टू हेल्प यू. वंस अगेन दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल मी 6475127000. किरण जी वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी फ्राइडे.
1: जी मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल जी, मुकेश जी दे नाल गलबात देखो जी तुसी कर सकते हैं 6475127000 ते बड़ा आसान जिहड़ा जी नंबर है और पूरे तरीके नाल जिहड़ी जी तुहाडी मदद करके देंगे. और नाल दी नाल जिथे कीतियां दे मेले दी जानकारी मैं एक बारी होर तुहाडे नाल सारे नाल सांझी कर दवां जी. जे तुसी लेट रेडियो चालू कीता है, तियां दा मेला जिहड़ा जी 21 जून नूं जिहड़ा जी संडे नूं इस जून दे विच जिहड़ा जी कुछ हफ्ते जिहड़े जी 2 हफ्ते रह गए आ, पीयरसन कन्वेंशन सेंटर दे विच होण जा रहा. पीयरसन कन्वेंशन सेंटर 21 जून एतवार नूं, ते जे तुसी लैणा चाहुंदे आ टिकट, ते टिकट जिहड़ी आ जी रेगुलर प्राइस टिकट दा $30 दा इंक्लूडिंग टैक्स आ, कोई भी एडिशनल फीस नहीं हैगी आ. जे तुसी लैणा चाहुंदे आ VVIP ते ओहदी प्राइस आ $100, ते जे लैणा आ VIP ते ओहदी हैगी आ $50. VVIP ते VIP टिकट्स जिहड़ियां आ जी साडे कोल इन्नियां ज्यादा नहीं हैगियां. सो जे तुसी लैणा चाहुंदे आ ते फटाफट सानूं कॉन्टैक्ट कर सकदे आ. जे तुसी रेगुलर लैणे आ ते आपां तुहानूं जिहड़ा जी लिंक सेंड कर दिंदे आ. नंबर साडा 9057990999, ते जिहड़ी आ जी तुसी साडे नाल गल्लबात कर सकदे आ. और सिंगर्स जिहड़े जी परफॉर्म करन लई पहुंच रहे, असीं टाइम टू टाइम अनाउंस जिहड़े जी करदे रहिंदे, जिहदे विच किसे तुहानूं दस चुके कि मन्नत नूर जी पहुंच रहे ਆ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 24ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ।

0: Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो।
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था, CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो,
2: 400
3: अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर प्लानिंग
4: इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
6: की तुसी अपनी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पे करदे हो? वरी ना, एक नाम असीं तुहानूं दसदे हां, मैनूं शर्मा होरंदा हां, इह तुहानूं आटो, होम, कमर्शियल, बिजनेस इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लैके देणगे। इह तुहानूं अप टू 35% डिस्काउंट लैके देणगे। जेकर तुसी प्रोफेशनल लोक हो जिवें इंजीनियर, टीचर, नर्सिस, डॉक्टर आदि, तां होर भी डिस्काउंट मिलेगा। लंबे समय तो मनु शर्मा होरी कम्यूनिटी दे विच आटो, होम, कमर्शियल दे बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे ने। अज ही इन्हां नूं कॉल कर लो 289-952-9532 298-952-9532। मनु शर्मा होरां दा टेलीफोन नंबर है, यह नोट कर लो।
7: टीम सिद्धू लैके आए ने कैलडन शहर दे विच जगोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नवी मास्टर प्लान कम्युनिटी जिहदे विच 2500 तों वी ज्यादा नवे टाउन हाउसेस, सेमी डिटैच ते डिटैच घर तैयार होणगे 2027 एंड 2028 दे विच। ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेस बट डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट नाल सिर्फ $7,00,000 दी रेंज दे विच इन द 700s बहुत जल्द आ रहे ने। सेमी डिटैच घर $8,00,000 दी रेंज दे विच इन द 800s रिलीजिंग वेरी सून। सब तो खास डबल कार गराज वाले बड़े डिटैच घर सिर्फ $9,00,000 दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून। पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट, एंड लॉट, कॉर्नर लॉट दे लई जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302